0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

त्रिपुरांतकाय नमः ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ॐ वृषांकाय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भद्राय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमतादिभाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगत्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिर्बुद्ध्याय नमः ॐ दिगंबराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खंडपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ वृढाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः

साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहान देवेश त्रैलोक्यतिमिरावहं दीपं दर्शयामि षड्रसैश्च समो भेदं नानाभक्षसमन्वितं नैवेद्यं तु मया दत्तं गृहान परमेश्वर सांब परमेश्वराय नमः शाल्यन्नं कृतगुलपायसं फलानि।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: वेद पाठाः
3: यजुर्वेद संहिता पाठः।
4: ओम इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो पायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु। श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतीः। अनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशुगुंसो रुद्रस्य।

पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुवो अग्रे गुवो अग्र इमं यज्ञन्नयताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणेध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था अग्नये वो

चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च मे मे चतुर्विपुंसतिश्च।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

देवां एह वक्षति वक्षति हा देवां देवां एह वक्षति एहा इह वक्षति वक्षति हेह वक्षति वक्षतीति वक्षति अग्निना रयिम् रयिम् अग्निना अग्निना रयिमश्नवदश्नवद् रयिम् अग्निना अग्निना रयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद् रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद् रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे

वस्तर दिवे दिवे दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया दिवे दिवे इति दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया धिया दोषा वस्तर धिया वयम वयम धिया दोषा वस्तर धिया वयम दोषा वस्तरिति दोषा वस्तः धिया वयम वयम धिया धिया वयम वयमिति वयम नमो भरन्तो भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि मस्या भरन्तो नमो भरन्त एमसि भरन्त एमसि मस्या भरन्तो भरन्त एमसि एमसि इमसीति इमसि राज